0: सच कहे जो हुंदा
1: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: खुरदी पानी सच है

0: फरवरी की प्रिंट हुई थी
1: जी
0: उसमें यह लिखा हुआ था कि दुनिया में जितने मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं
1: जी
0: वो सिर्फ अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं बोला राइट यार क्या बात है, और बोले वो पड़ोसी वो आपकी गाड़ी को 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं देखता।
1: हाँ बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: बोलने का मतलब क्या है, देखिए ये एक फलसफाना बात है तो इससे इंसान को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। मान लीजिए दर्शन साहब कल आप लंबागिनी लेके स्टूडियो आ गए या जो है सो क्या कैन कैरी आ गए, मैं बोल रहा हूँ लंबागिनी लाओ चाहे मस्टर्ड लाओ या मसरती लाओ या बड़ी से बड़ी फरारी लाओ, वो चलने वाली कहाँ है? जमीन पे चल रही है या आसमान पे उड़ रही है? हेलीकॉप्टर प्लेन तो चिल्लाए ना नहीं, तो फर्क क्या है बताइए? तो वही वाली बात होती है। और फिर कब तक हम आके दूसरों के लिए जिएंगे?
1: जी जी जी।
0: हमारी अपनी दुनिया कब आबाद होंगी, हमारा अपना सुख कब होगा? बिला वजह वो रेस में आप शामिल हो रहे हैं जबकि आप बूढ़े हैं, भाग नहीं सकते। मिसाल दे रहा हूँ, बूढ़े से मतलब आपको नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई बूढ़ा है और वो बोल रहा है यार मैं जवान की तरह भागना चाहता हूँ। भाई तू कैसे भागेगा? तेरी गाड़ी पुराने मॉडल की, वो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी, ये कुदरत का भी निजाम है, नई चीज पुरानी चीज एक्सपायरी ये सब क्यों रखे? तो कहने का मकसद ये कि जिस हाल में है थैंक गॉड बोलना चाहिए। और गालिब का शेर भी है सिलसिले में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।
1: अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आप बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू।
0: मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगता, सारों को मेरी तरफ से सत श्रीकाल।
1: सत श्रीकाल जी, चरणदीप जी सत श्रीकाल।
2: भाजी जी
1: की हाल चाल है?
2: भाजी प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता,
1: शुक्रिया मेहरबानी।
2: 11 बजे पंजाबी विरसा आंदा।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। सो दोस्तों 647-367-5553 साडे स्टूडियो दा नंबर है, तुसी कोई गलबात करनी होए तो मेरे नाल कर सकदे हो, ते मैं एक छोटा जिहा तुहाडे नाल मैसेज शेयर करदा, ते उस तों बाद फिर आपां जुड़दे आं प्रोग्राम नूं तोरदे आं अगे। साडे मेन प्राउड स्पोंसर विलेज ऑफ इंडिया, शुद्ध शाकाहारी भोजन दे विच जाणिया पहचाणिया नाम, पिछले 3 दहाकियां तों पूरे कैनेडा दे विच 5 वख्खरियां लोकेशनस दे उपर अपणियां सेवावां दे रहे ने। 114 कैनेडी रोड ब्रम्पटन और 6400 एरन मिल पार्कवे मिसी सागा लंडन हैलीफैक्स और विंडसर दे विच भी विलेज ऑफ इंडिया की ब्रांच है। तुसी इन्हां दा बुफे ट्राई करो, स्ट्रीट फूड इन्हां दा इंजॉय करो, आके इत्थे बिल्कुल पंजाबी माहौल पंजाबी खुशबू ते पंजाबी जायके दा तुसी आनंद माणोगे। घर दे विच कोई लाइव केटरिंग करवानी है तुसी मेन्यू अपना डिसाइड करो, ते इन्हां दा ट्रक आएगा ते गर्मा गर्म हर चीज तुहाडे घर दे दरवाजे दे उपर तुहानू पहुंचदी करनगे। टिफिन लगवाना तुसी 7 दिन लई 6 दिन लई 5 दिन लई जो मेन्यू डिसाइड करोगे, जो उसकी कीमत होएगी वह भी तुसी जानकारी लै सकदे हो। कोई छोटा मोटा 100-125 आदमियों का फंक्शन करना तुहानू हाल चाहिए, तुसी इन्हां दा हाल बुक करवा सकदे हो। लाइट एंड साउंड डीजे वगैरह का पूरा इंतजाम है, 100-125 गड्डियां दी पार्किंग उत्थे खुली डुली है। ते तुसी किसी किस्म दी कोई भी जानकारी लेनी हो 114 कैनेडी रोड विलेज ऑफ इंडिया, फोन नंबर 905-450-3333 905-450-3333 6400 एरन मिल पार्क वे दा नंबर मिसी सागा दा 905-542-1333 905-542-1333। दूसरे साडे प्राउड स्पॉन्सर ब्रम्पटन कैश एंड कैरी 100 कैनेडी रोड, पंजाबियों के कोस्को के नाम जानिया जाता, विशाल 60,000 स्क्वेयर फुट के फैलिया होया विशाल स्टोर, फोन नंबर 905-230-4800 905-230-4800। तुसी घर दे विच वरत्या जाण वाला कोई भी समान A to Z, चाहे वह ग्रोसरी है चाहे कोई औजार है चाहे कोई मेडिसन है चाहे पंजाबी सभ्याचार दे नाल संबंधित कोई चीज़ है चाहे कोई डिस्पोजेबल

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉट सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुन हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699.
2: ਭੈਣ ਜੀ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ
4: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699
5: चॉकलेट लेनी है
6: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
7: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
8: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज
9: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो वेयर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकर लैंड विद 2 रोड फ्रंटेजेस डबल कार गैराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000
10: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
11: Chef. यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपर्ली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200
12: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401-416-816-8404-8408
13: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
14: ड्राइविंग लाइसेंस
13: नो
14: पुलिस ऑफिसर
13: नो नो
14: ट्रैफिक लाइट्स
13: नो
14: देन
15: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना
17: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले उसमें से एक भी मैच नहीं हारे
5: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 9054512600 9054526200।
18: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड जिथे तुसी ट्रक वॉश ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो। इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45 तुसी कैड दी बैटरियां विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850 सारियां रियर ड्रम एंड रियर ब्रेक चेंज एट $750 एंड एसी रिचार्ज इज एट जस्ट $180 सो रीच आउट टू दैम कॉल एट 9054529955 इन अदर एड्रेस है 71 स्टैफर्ड ड्राइव ब्रैम्पटन ते राइट नाउ ए हायरिंग भी कर रहे ने जे तुहानू ट्रक मकैनिक दा कोई एक्सपीरियंस है यू कैन कॉल दैम देयर नंबर इज 9054529955
19: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4161-302-9941।
5: ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਗਰ।
17: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
5: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 9054512600 9054526200

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: डेल मुंडी रियल स्टेट दा सितारा लोकां दा विश्वास डेल मुंडी नवे प्रोजेक्ट दा माहिर डेल मुंडी डील दवाउण दे विच होर वाधा करदा डेल मुंडी कम्युनिटी विच लंबे समय तो नाम बना चुका डेल मुंडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दीयां बरीकियां नूं समझण वाला डेल मुंडी अगली प्रॉपर्टी तुहाडी एक्सपर्ट एडवाइजर रियल्टर डेल मुंडी 416-313-1313 डेल मुंडी 416-313-1313
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808
3: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
4: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
5: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
4: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
5: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
6: आज खुश तो बात हो गया
7: ओ ता होना ही है जदों ढिल्लों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तै नकदा बनदा ही है
6: आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी
7: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
8: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
7: ਓ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ
9: ਡਾਮ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
7: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ
10: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM.

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
2: इंडिया दियां टिकटां चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दियां टिकटां ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटां दिल्ली दियां ते दो अमृतसर दियां मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो तां साडी स्पेशलिटी है बस दसो कि टिकटां कदों दियां चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नाम कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: 32-55-80 98
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowway Drive नियर चिंगूजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607।
5: मित्रां दे जंक्शन ते।
6: ओ केड़े जंक्शन ते?
7: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
5: रात लगियां महफलां रे।
7: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
8: बिल्कुल जी, टिक्का जंक्शन दे उत्ते हर फ्राइडे लाइव म्यूजिक सुनो, वधिया खाना खाओ, पहुंचो रदरफोर्ड ते क्वीन दे कॉर्नर दे उत्ते, जुड़े हो वतन दूर दे नाल। और मैं पहला भी दस के गया कि एक 2 बेडरूम दी अपार्टमेंट ब्रैम्पटन दे इलाके च नवी, बिल्कुल नवी, और एक वाशरूम दे नाल 1100 कुछ स्क्वेयर फीट है। सिर्फ $4 लाख तुहानू मिल सकदी है। नंबर है 416-881-7070। तो किरण जी काफी जी। बहुत सारे फोन आ रहे ने जिहड़े कि आपां बोल लिया कि जिहड़ा प्लाजा ब्रैम्पटन च बन जा रहा 2 साल तक बन के रेडी होना, तुसी सिर्फ 5% डाउन दे के ही उनू होल्ड करना। और जिहड़ा मर्जी बिजनेस खोलन लई हाले अवेलेबल है, और कुछ कल भी साडे कोल 3-4 यूनिट बुक होए ने। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हां परिवारां दा ते शुभकामनावां उन्हां दे बिजनेस लई, व्यापार लई। और 2 साल बाद इन्हां दी कीमत फिर बढ़ जानी है। और हाईवे 410 ते हाईवे 10 दे बिल्कुल नजदीक होवेगा, और क्योंकि बिल्कुल हाईवे उत्ते आ, उत्ते बहुत सारे घर भी बने हुए ने, होर भी बहुत आ रहे ने उधर नूं घर, सो काफी बिजी एरिया होवेगा। ते 17-18 एकड़ दे विच इह बन के प्लाजा तैयार होना, तकरीबन 2 लाख स्केयर फीट दा प्लाजा होवेगा, जिथे तुसी कोई भी व्यापार अपना खोलन लई यूनिट होल्ड कर लो, जिन्हां चों भावें रेस्टोरेंट बनाउणा है, तुसी कोई ऑफिस बनाउणा, कोई मेडिकल दा बनाउणा, कोई फार्मेसी, कोई डेंटिस्ट, कोई ग्रोसरी स्टोर, किसी गल की है जी कि कोई भी व्यापार तुसी करना चाहुंदे हो ते वधिया एरिए च वधिया प्लाजे च होल्ड करना चाहुंदे हो, यूनिट अपना 2 साल च बन के तैयार होना, ते थोड़ियां थोड़ियां किस्तां च ही तुसी जिहड़ा 30% पैसे देने ने 2 साल दे विच, ते उस तो बाद मॉर्गेज लोन दा इंतजाम भी टीम साडी करवा के देवेगी। नंबर 416-881-7070। ते करण जी वीकेंड है, उम्मीद है कि इस वीकेंड दे उत्ते काफी जिहड़े परिवार है उत्थे आउणगे।
9: बिल्कुल जी बिल्कुल। और नाल दी नाल सुखी जी आपां दस दईए कि प्राइम इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी नाल जिहड़ा जी अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट दा जिहड़ा प्रोग्राम जिहड़ा कि डे केयर दे विच साडे भैण भरा काम करदे, ओह कोर्स जिहड़ा है जी इन्हां दे लॉन्च हो चुके आ। सैप्टेंबर इनटेक ए हुण जिहड़ा है जी लै रहे ने, सो तुसी जिहड़ा है जी इन्हां दे नाल गल्लबात करन दे लई नंबर 647-499-1009 ते कर सकदे आ। जे तुसी PSW दा वी कोर्स करना चाहुंदे हो 24 तो सिर्फ और सिर्फ 25 वीक का इन्हों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जड़े आ जी कोर्सेज होंगे ने, तो बिल्कुल जी गलबात हो सकती है 647-499-1009
8: जी। और तुहाडे वल्लों काफी फोन बज रहे ने जी, साडियां सारी टीम के मैंबर तकरीबन बिजी हो गए ने फोना ते। 416-881-7070 जे फोन नहीं साडा साडे को चक होंगे ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੋ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 416-881-7070 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9057990999 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: रेडियो देश प्रदेश
1: फॉर एडवर्टाइजमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551